0: 公里。此外，灾区已形成堰塞湖。专家提示，一旦发现上游洪水下泄，需向斜坡方向撤离。
1: 26号，尼泊尔北部发生了大规模的泥石流灾害。根据尼泊尔国家减少灾害风险管理局28号发布的消息，截至当地时间的19时，泥石流灾害造成了579人遇难，1924人失联。
2: 尼泊尔专家在接受总台记者采访时表示，此次泥石流灾害的始发源头在尼泊尔一侧。
3: Lingde River भनिन्छ यो नेपाल र चाइनाको बोर्डरको रिवर हो यो खोला नेपाल र चाइनाको बोर्डर जहाँ रातो देखाइरहेको छ यो पार्ट नेपाल र नर्दर्न साइड चाहिँ चाइना र यो चाहिँ नेपाल र चाइनाको लिरुङको हाम्रो बोर्डर पोइन्ट हो र यहाँ चाहिँ यो इभेन्ट
4: यो तपाईँले लेखेको
3: यो हामीले यो नेपाल साइडको यो पोइन्ट चाहिँ लिरुङ ग्लेसियर भन्दा माथिको पार्ट हो र यो चाहिँ जहाँबाट रक फल सुरु गर्यो
5: 我们可以看到目前冰崩点注册的很清楚是在这一个地方发生了这个冰崩这一侧呢就是在整个的这个边界的这个尼泊尔一侧这一次因为这个冰崩发生的特别突然一下子在短时间内产生了巨大的冲击力所以巨大的这个冰块裹挟着这个目前这个山上本身就有的泥沙就冲入到了从这个把这一个小河道整体的冲过来所以就造成瞬间整个的这一部分东印藏布河也就是他们说的伦德河以及下游的这些尼泊尔的博特西河等等都产生了大量的水量产生了大量的泥沙在这个口岸附近这个中方一侧也受到了巨大的破坏尼泊尔除了口岸它的附近它一直向南向它整个这个河的流域包括最后汇入它的这个特里舒里河等等都受到了一些的这个波及
1: 联合国驻尼泊尔人道主义协调员28号表示，在尼泊尔泥石流灾区约40公里道路被毁，初步评估显示至少9.3万人受灾，迫切的需要人道主义援助。
2: 联合国儿童基金会表示，灾区18所学校被完全摧毁，另有20所学校受损，约10000名学龄儿童的学业受到严重影响。
6: 您正在收看的是《朝闻天下》。这么近，那么美。周末到河北，
7: 绿色食品让生活更美好。
6: 吉林大米因为绿色所以出色一代金黄鲜食玉米在这等你麦芽五谷吉林杂粮为你健康守护吉林玉米玉米中的大熊猫甘醇入口绵润入喉活力入心稻花香为幸福生活酿美酒去见山，去见水，去见旷野星空。祖国正北方，亮丽内蒙古。
8: 每一柱数字本无故事，是您让他们变得意义非凡。托您的福，让每个托付都心中有数。
9: 娃哈哈红茶。精致玉液扫码迎金运动来一瓶聚会来一瓶精致玉液扫码迎金
10: 中国诗词至唐宋而天籁白酒酿造至汾酒而官至青花汾酒开启高品质生活
6: 世界大会中国宜宾
1: 朝闻天下我们新闻继续2026年亚太经合组织第三次高官会27号至28号在辽宁省大连市举行高官会是推进 APEC 合作酝酿领导人会议成果的主要渠道和